0: आपने मुझे बुलाया सर?
1: यस विजय, इट्स समथिंग वेरी एक्साइटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे रूम के ऑफिसर ने एक रिकॉर्डेड मैसेज भेजा है, सुनो.
2: आप जानना चाहते हैं कि मोनिका का खून किसने किया? आप जानना चाहते हैं कि डांस की जो फिल्में बॉम्बे से स्मगल होती हैं उनके पीछे क्या राज हैं? आप जानना चाहते हैं कि उस गैंग के एजेंट के नाम और पते क्या हैं? तो इन सवालों के जवाब मैं आपको दे सकता हूँ. कीमत सिर्फ $50,000. मैं कल रात को ठीक 9 बजे आपके दिल्ली के एजेंट को फोन करूंगा. उनका नंबर दीजिए. अगर उन्हें यह सौदा मंजूर हो तो वेरी गुड. ओवर.
0: Interesting.

0: Good evening, Sheila.
1: Hello.
0: Hi, Sheila.
1: Good evening.
0: Fantastic, Sheila ji. आप खुद जितनी खूबसूरत है ना, आपकी आवाज भी उतनी खूबसूरत है.
1: शुक्रिया.
2: हेलो स्वीट हार्ट, क्या सेक्स है आपकी आवाज में. सेक्सी वॉइस, सेक्सी बॉडी.
3: मेरे बारे में क्या ख्याल है? Do you find me sexy?